0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: नहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: जब चाहे चली आए रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420
1: एक्सक्यूज मी प्लीज
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस
2: रियली
0: राइट राइट मैं

0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: ओह माय,
0: राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
3: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड बाय द हेमोग्लोबिन ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द कंट्री।

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: हाउ क्यूट,
0: राइट, मैं दुनिया

0: करियालाल जी, करियालाल जी,
1: कहाँ कहाँ कहाँ है? हाँ मोहन बाबू, सलाम, नमस्ते नमस्ते, सलाम।
0: करियालाल जी,
1: हाँ
0: ये कमल बाबू है।
1: कौन?
0: हमारे कंपनी के नए ऑफिसर।
1: अच्छा,
0: इसी बंगले में रहेंगे।
1: कमल बाबू नमस्ते, स्वागत हो, सलाम, आप इधर रहेंगे? अच्छा,
0: करियालाल जी अभी तो सूरज डूबा भी नहीं और आप शुरू?
1: अभी क्या है भाई, संडे है, सूरज निकला कब था वो भी मेरे को मालूम नहीं।
2: मतलब सुबह से शुरू है।
1: अब क्या है साहब, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी हराम होती है।
0: अच्छा ठीक है, तुम मस्त रहो। चाबी कहाँ?
1: वो सुधरी भाग गई है।
0: मैं बंगले की चाबी की बात कर रहा हूँ।

0: तो मिल यार।
1: छोड़ो यार, तुम बहुत बंडा आदमी हो।
2: क्यों क्यों क्यों?
1: माँ बदौलत तुमसे और सुनीता से बहुत सख्त नाराज है।
2: हम वजह जान सकते हैं
1: यार, तुम दोनों अपने कॉलेज के साथी को भूल गए, चुपचाप शादी कर ली और हमें पता तक नहीं दिया।
2: अरे यार, वो क्या हो गया, वो शादी इतनी जल्दी में कर दी, और तेरा एड्रेस नहीं था ना मेरे पास।
1: हाँ, लेकिन अब मुझे सब पता चल गया और अब तुम बच नहीं सकते। पार्टी कब दे रहा हो?
2: जब बोलो।
1: इसी संडे को हो जाए?
2: घर आ जाना।
1: व्हाट डू यू मीन बाय आ जाना घर पर? अबे सारे स्टाफ को बुलाना होगा, एक शानदार पार्टी होगी। सॉरी सॉरी सॉरी, अटेंशन प्लीज, आप सब लोग संडे की शाम फ्री रखिएगा। मिस्टर कमल अपनी नई नई नौकरी और नई नई शादी की खुशी में हम सबको पार्टी दे रहा है।
2: तालियां।
1: लेकिन मिस्टर कमल, ये टी और कोल्ड ड्रिंक से काम नहीं चलेगा, विस्की पार्टी।
3: विस्की कब, कहां, किस वक्त?
4: आज रात को 12 बजे जहन्नम में
3: पहुंच जाऊंगा।
2: सुन, विस्की का इंतजाम कहां से होगा?
1: अरे यार, तू क्यों घबराता है? बोतले मैं ले आऊंगा, वैसे तुम दे देना।
2: अच्छा, डन
1: डन।
5: साहब, ये 100% मौसमी की लगती है।
6: अबे और ठहरे बस, ये विस्की है विस्की, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट।
5: समझे?
7: साहब आप मुझे व्हाइट ही डाल दीजिए, सोना ब्लैक पुलिस ले जाए।
6: शट अप, जब तक मेहमान लोग ना पी ले दारू का नाम मत। समझे? उठाओ बोतल नहीं ट्रे, आओ मेरे साथ।
5: तुझे क्या चाहिए, व्हाइट या ब्लैक?
8: अरे मुझे ना ब्लैक चाहिए ना व्हाइट, मुझे तो तेरी मूछें देख के नशा हो रहा है। तेरी कसम, कितनी प्यारी लग रही है।
5: मेरी मूछें तुझे बहुत पसंद है।
8: बहुत
5: सच्ची इधर आ, और ये ले रख।
7: खड़ी खड़ी क्या देख रही है, जा संभाल के रख।
6: वेलकम सर, थैंक यू। एंड दिस इज फॉर द होस्ट।
2: तुम पियो यार, मैं तो पीता नहीं।
6: क्या मतलब? समझा, भाभी से डरते हो? भाभी जी प्लीज आज अपने पति को एक पैक की परमिशन दे दीजिए, वरना सारी पार्टी का मजा किरकिरा हो जाएगा। प्लीज
8: इतना कह रहे हैं तो एक ले लीजिए ना।
6: थैंक यू।
9: इनकी बात छोड़िए, आप क्या कह रहे
6: हैं? ये हुई ना कुछ बात। आइए भाभी जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, चीयर्स फॉर मिस्टर एंड मिसेस कमल भटनागर। चीयर्स।
10: गॉड ब्लेस द कपल।
9: हेलो हेलो मोहन, आओ यार।
2: हेलो
9: भाभी, कहाँ?
10: शुभकामनाओं के साथ।
8: मोहन जी आपने भी फॉर्मेलिटी की।
10: फॉर्मेलिटी कहाँ, छोटा सा तोहफा तो है, और फिर किसी को तोहफा देने का मौका जिंदगी में बार बार थोड़ी आता है।
6: यू आर राइट, इसलिए लीजिए अपना सितार और आज एक ऐसी खूबसूरत चीज सुना दीजिए जो इस पार्टी को और भी रंगीन बना दे।
10: मैं तो सिर्फ सितार बजाता हूँ, साथ में गाना हो तो मजा आ जाए।
6: ओहो, आप सितार तो लीजिए, उसका बंदोबस्त भी मैं कर देता हूँ। बस सिर्फ भाभी जी से रिक्वेस्ट करने की देरी है।
8: नहीं नहीं, मुझे गाना वाना नहीं आता।
6: भाभी जी आप मुझे इनकार मत कीजिए, प्लीज गा दीजिए ना।
8: मैं सच कहती हूँ, मैंने गाना गाना छोड़ दिया।
9: सुनो, जब सबकी फरमाइश है तो गा दो।
8: नहीं कमल,
9: गा दो ना। अच्छा मेरे लिए गा दो।
8: नहीं नहीं
9: प्लीज,
8: मैं सच कह रही हूँ, मेरा मूड नहीं है।
9: मेरे लिए गा दो।
8: नहीं।
10: सुनीता जी, संगीत तो भगवान की देन होती है, और वो भी दूसरों को देने के लिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, अगर मेरे सितार के सुर सच्चे हैं और संगीत में जादू, तो आप जरूर गाएंगे।

0: लोग हंसेंगे।
1: हंसे? जब सब मेरी सुनीता की इतनी तारीफ कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूँ।
0: ये क्या?
1: ये चेयर्स फॉर यू। ए सुरेश, डोंट गो। आई जस्ट गो गेस्ट। लेट्स हैव अ ड्रिंक।

0: अरे ये क्या, तुम यहाँ सो गए? कपड़े भी नहीं बदले, क्या हालत बना रखी है?
1: बनाकर फकीरों का हम भी ग़ालिब, तमाशा अहले करम देखते हैं।
0: इसका मतलब है?

0: तुमने ज्यादा पी रखी है।
1: हो सकता है।
0: इतना ज्यादा पीने की क्या जरूरत थी?
1: सच बताऊं, मुझे पार्टी में कुछ अकेला अकेला लग रहा था।
0: लेकिन क्यों?
1: तुम गाते गाते खो गई थी, लोग सुनते सुनते खो गए थे, और मैं दूर बैठा अकेला उन लोगों को देख रहा था जो तुम्हें देख रहे थे, इसलिए मैं...
0: आज सिलिस्की को हाथ भी मत लगाना। चलो अंदर कपड़े बदल लो। चलो आओ ना, आओ आओ।
2: आप मूड कैसा है जनाब?
1: फर्स्ट क्लास, एक्सीलेंट।
2: आज जल्दी जा रहे हो?
1: टाइम हो गया ना इसलिए।
2: तो फिर तुम्हारी घड़ी गलत है। देखो अभी 10 मिनट बाकी है।
1: किसे मालूम कौन गलत है कौन सही है। देखो आज शाम जरा मैं देर से आऊंगा।
2: क्यों?
1: आज दोस्तों ने टेनिस पे बुलाया, अगर नहीं जाऊंगा तो मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे चोरू का गुलाम हो गया। देर से आऊंगा बुरा तो नहीं मानोगे?
2: कैसी बातें कर रहे हो, आखिर दोस्तों का भी तो कुछ हक है तुम पर। बल्कि मैं तो कहूंगी ऑफिस के बाद हर रोज शाम को क्लब जाएगा।
1: अच्छी बात है, ऐसा ही होगा।
2: सुनो।
1: कहो।
2: भूल गए
1: क्या?
2: वो तुम्हारी मुखशुद्धि।
1: ऑफिस में देर हो रही है।

0: ओके मिस्टर बेलानी,
1: लेट्स हैव वन गेम मोर।
0: नहीं आज नहीं।
1: क्यों, क्या बात है, कुछ परेशान नजर आ रहे हो?
0: नहीं ऐसी बात तो नहीं।
1: फिर आज अच्छी तरह से तो नहीं खेले आप?
0: वो जरा प्रैक्टिस नहीं रही ना। ओके
2: अरे क्या बात है यार, आज मोहन टेनिस खेलने नहीं आया।
3: अरे वो तो आज तक कभी उसने क्लब मिस किया ही नहीं।
1: ये पहली बार है जब वो टेनिस खेलने आया नहीं।
2: आज वो ऑफिस से भी जल्दी चला गया यार,
1: किसी लंबे चक्कर में।

0: ऐसा जो सुना कि हंसते हंसते मेरे पेट में दर्द हो गया। एक बार फिर से इन्हें सुना दीजिए ना।
1: जोक रिपीट कर रहे से उसका मजा चला जा रहा है।
2: आज यार तू टेनिस खेलने नहीं आया?

बहुत प्रेजेंट तो और लोगों ने भी दिए मगर ये मुझे सबसे अच्छा लगा इसलिए मैंने इसे आपके सपनों की रानी के पास रख दिया था। अरे मैं दूध स्टोव पर रख कर आई थी कहीं जलना चाहे अभी आती हूँ।

0: अरे आज इतनी जल्दी घर आ गए? खेलने नहीं गए थे क्या?
1: ये क्या हुलिया बना रखा है? क्या कर रही थी तुम?
0: कुछ नहीं, ऐसे तरह घर की सफाई का मूड आ गया था।

0: दरवाजा क्यों खुला?
1: अभी अभी कूड़ा फेंका था, बंद करना भूल गई।
0: अंधेरा होते ही बंद कर दिया करो।
1: कुछ परेशान नजर आते हो, तबीयत तो? कमला हर बात क्या है, तुम इस तरह हर कमरे में क्या देख रहे हो?
0: मुझे कोई मिलने आया था।
1: नहीं तो? अरे हाँ, मोहन जी आए थे, उन्हें कहीं बाहर जाना था, बैग चाहिए था, मैंने तुम्हारा एयरबैग खाली करके दे दिया है।
0: अच्छा किया।

चराचर जगत् संरक्षणीं सत्पदां चंचन चंपक नासिकाग्र विलसन् मुक्तामणिरञ्जितां श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ओम श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ॐ श्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

0: Going on the beach, on a picnic, on a hike. Your garbage is your responsibility. Let us keep our environment clean. A message courtesy, Paguanzing's Port of Spain and Chaguanas, building Trinidad and Tobago for a better world.
1: You are listening to Radio Jagriti 102.7 FM.
2: शनि शब्द की ध्वनि कान में पड़ते ही अज्ञानी मनुष्य भय से कांप जाता है। उसे उसकी 19 वर्ष की महादशा, साढ़े साती और ढैया का स्मरण हो आता है, जिसके कारण उसका भय निरंतर बढ़ता ही जाता है। किंतु जो शनि की आराधना, पूजा, अर्चना तथा भजन में अनुरक्त व्यक्ति हैं, उन पर शनि की महती कृपा होती रहती है। वे सभी सुख समृद्धि से आनंदित होते हुए शिव धाम को प्राप्त करते हैं। कहते हैं, स्थान वृद्धि करो शनि। शनि जब अपने 10वें 11वें स्थान पर होता है तो व्यक्ति की उन्नति होती है, किंतु अन्य स्थानों से शनि की 3री 7वीं और 10वीं दृष्टि घातक होती है। अतः शनि सदैव पूजा के योग्य हैं। आओ हम शनि की कृपा प्राप्ति के लिए शनि का ध्यान करें, पूजा करें, भजन और मनन करें। ओम शं शनिश्चराय नमः।

0: लो, सुबह होते ही तुम्हारी शिकायतें आनी शुरू हो गई।
1: हाँ यशोदा, हमने कन्हैया का शिकायत लेके आए हैं।
0: हाँ हाँ, मुझे पता था, पर एक एक करके बताओ।

0: देखो देखो मुंह कैसे बना रहा है, कितना भोला बन रहा है, जैसे कुछ किया ही नहीं है। आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं।
1: मैंने कुछ नहीं किया माँ।
0: तुमने कुछ नहीं किया, तुम चुप रहो, अभी मैं तुमको बताती हूँ।
2: यशोदा माँ, यशोदा माँ, तेरे कन्हैया ने
0: पता है आज भी कोई शिकायत लेकर के आई होगी। बताओ राधा, क्या किया मेरे कन्हैया?

रोकूं मन के शोर को, ये कहां रुकता है। इस शोर से परे उस मौन से मिलना है, मुझे शिव से भी नहीं शिव में मिलना।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात एक बात, लेकिन एक बात।

हम बैंड वाले भाई साहब, एक मिनट, क्या है कि हमारी मीना यहाँ कहीं ऊपर रहती है, हमें उसका पता मालूम नहीं। आप थोड़ा बाजा बजाएंगे, हैं पैसे बाद में। 1, 2, 3, 4।